उसमें से मुआद निकलता है उसको हम वेट एक्जिमा बोलते हैं, ऊजिंग एक्जिमा बोलते हैं। कई बार निकलता कुछ नहीं लेकिन खारिश ड्राई हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो कम है लेकिन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, खारिश वो सिर्फ इसलिए हो रही है। तो मतलब खारिश का एक्सप्लेनेशन ये है। हम फिर आ रहे हैं अपने उस फेफड़े की तरफ ही। तो फेफड़े के अंदर का जो ट्री था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोंकस का जो ट्री है वो इस तरह काम करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें बाहर आ जाती है, या और भी जितनी नाइट्रोजन गैसेस में बनती हैं उनको वो बाहर निकालना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से, मान लीजिए जैसे आप पहाड़ी में चले गए, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पर जरूरत है ना शरीर की। हम कुदरत ने नियम फिक्स किया है कि 14 से 16 बार अगर एक आदमी सांस लेता है तो जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, या हम तेज तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी हम तेज तेज सांस लेते हैं। इसीलिए लेते हैं कि अंदर की डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई पूरी करनी है, इसलिए हमारा सांस तेज तेज चलता है। अब इसने ऑक्सीजन ले रही तो हार्ट को ऑफ ग्राउंड मुसीबत हो गई कि भाई इसको आगे सप्लाई भी करना, हार्ट जो डिपू है ना बेचारा, है चीनी का डिपू है, बाहर से सामान आया है इनको आगे सप्लाई करना है, ये रख भी नहीं सकता, तो इसलिए हार्ट भी उतना तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। हम दौड़ते हैं तो हार्ट भी इतना तेज तेज चलता है, हाइट पे जाते हैं सांस फूलता है तो हार्ट भी बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वो पूरी उसकी कर रहा होता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था हमारे फेफड़ों का था। उसके बाद फंक्शन के बारे में तो आप सब समझते हैं कि इसका फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन के बिना कोई सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इस तरह का काम करती है, अगर चूल्हे में हमने लकड़ी रख दी लेकिन ऊपर दाल सब्जी भी रख दी, लेकिन हमारे पास माचिस ही नहीं है, आग नहीं बलेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन, अब वैसे भी अगर चूल्हे में आग नहीं जलती तो हम फूंक मारते हैं ना, फूंक मारने का मतलब क्या होता है, आग को जलाना। और ये जो हवा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह का काम करती है कि आग पैदा होती और जिससे हमारे शरीर का पूरे का पूरा चलन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। कभी आगे किसी प्रोग्राम हुआ तो मैं ये भी आप बताऊंगा कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आग बढ़ती है, ये कैसे होता है कि ऑक्सीजन से सारा शरीर काम करने शुरू कर देता है, जो ऑक्सीजन नहीं है तो पता मुर्दा हो जाता है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि ये कैसे कैसे होता है। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, पर हाल है बाकी बहुत कुछ मुझे कहने वाला है, जैसे वेट है, अलग अलग फेफड़ों का अलग अलग वेट है, नीचे का जो डोम है उसकी कैसी कैसी बनतर है, उसमें क्या क्या है, और उसमें अगर कोई अंतर आ जाता है तो हमारे पास क्या क्या निशानियां बाहर आएंगी। अभी तो बहुत सी बीमारियां हैं इसकी, फेफड़ों में क्या क्या होता है, जैसे दमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, सीओपीडी होता है, पता नहीं कितनी बीमारियां, जितनी जितनी मुझे याद आती जाएंगी मैं आप सब लोगों को बताता जाऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे फर्क होता है। इसको हम दमा क्यों बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस क्यों नहीं बोलते, ब्रोंकाइटिस ही क्यों बोलते, निमोनिया क्यों नहीं बोलते, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अगले प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और फिर बताऊंगा कि भाई अगर इस सारे ताने बाने में कोई नुक्स हो जाए तो डॉक्टर तो देख लेंगे, आम आदमी क्या देखेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जब इस तरह के वकार फेफड़ों में पैदा हो जाएंगे तो कुछ निशानियां बाहर आएंगी जो आम आदमी देखकर पहचान सकता है कि इसके यहां पर नुक्स है भाई, ताकि वो कंसर्न डॉक्टर के पास उसको ले जाए सीधा और सीधा उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। या बहुत सी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप घर पर भी बहुत सी चीजों का उपचार कर सकते हैं ताकि सीरियस होने से पहले पहले आप उसको कुछ सहूलियत दे सके, कुछ बचा सके, और डॉक्टर के पास जाए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले ओ जी आपने तो देर कर दी लाने के लिए,
सो बहुत सी चीजें इन प्रोग्रामों में मैं आपके साथ हमेशा साझी करता रहता हूं, और अब फेफड़ों की बात आई है तो वो भी मैं बातें आपके साथ साझी करूंगा कि कौन सी निशानियां बाहर आएंगी अगर इसमें ये पूरे सर्कल है, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो, अगर प्लूरा में कोई नुक्स हो गया है तो, अगर किसी लोब में नुक्स हो गया तो, अगर हवा यहां रुक गई बाहर आ ही नहीं रही फेफड़ों से जिसको बाहर आना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है और उसकी निशानियां क्या होंगी जो बाहर आएंगी, जो बाहर आप देख सकते हैं, इसका वेरवा मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 95568 फोन नंबर 408-687-1899 ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी, सर्कल है, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो, अगर प्लूरा में कोई नुक्स हो गया है तो, अगर किसी लोब में नुक्स हो गया तो, अगर हवा यहां रुक गई बाहर आ ही नहीं रही फेफड़ों से जिसको बाहर आना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है और उसकी निशानियां क्या होंगी जो बाहर आएंगी, जो बाहर आप देख सकते हैं, इसका वेरवा मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 95568 फोन नंबर 408-687-1899 ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरे 52 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इसमें से 26 साल मेडिकल

0: 9899 email address homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरे 52 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इसमें से 26 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, अब जब से अमेरिका में हूँ 32 साल हो गए, तब से भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एवरी डे पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ उसके हिसाब से रुकावट कहाँ हो सकती है वो मैं आप सब लोगों को बता सकता हूँ, ताकि आपका इलाज हो सके, आप जल्दी सेहत याब हो सके। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब। थैंक यू,
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं,
0: सत श्री अकाल।

0: जाने तेर विजया जिस दे विच सब कुछ जांदा एक ऐसा खेतर विद्या है।
1: वंडरफुल
0: सच झूठ नितार कर दे एक ऐसा खेतर विद्या है दौलत ते ताक ते अपनी थां पर सब तू बेहतर विद्या है पर सब तू बेहतर विद्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: பிள்ளை அடநா குருநாளுக்கு வாகனாத்த ரப் நாள் விளடனா ज्योति भाई बोले जिन्हों बारे तुम बहुत ही डिटेल में दस्या ते उन्हां दी दास्तां बहुत ही ज्यादा अज दे समाज नूं सेध देण वाली आ। उन्हां टाइमां दे विच देखो पहली भारत दी एक टीचर हुई किन्ना संघर्ष करके इसे तक पहुंची। तो उस क्रांतिकारी सुचरी भाई फूले बारे मैं चार लाइना तुहानूं सुनाउण जा रहा जो कि साडे सोहण लाल सहजल साहब जी दियां लिखियां ने।
1: वाह

रुड जावे। लोड़ बंद जे खाली दर तो मुकावे, कस की है वो माया जो ऐवे रुड़ जावे। दौलत कम की खूंजे खल्ला में रहना कुछ भी ना, समय समय दी खल्ला में रहना कुछ भी ना।

entendi. अच्छा कानून है. अच्छा जी. अच्छा अच्छा जी. अच्छा इतना कंपटीशन है. बोल दे.

感じ。अच्छा ये तो खुशी प्रकारी गई कि बड़े सोने लफ्ज बोले गए जनों के शर्म वाली गल है।

हाँ जी जी अच्छा अच्छा बबी जी तुसीं बड़ी देर तो नहीं अकालियां दी सरकार वेले कांग्रेस दी सरकार वेले ये सब गल्लां सुनदे नहीं आए कि आ प्रोजेक्ट आ रहे ने आ जाना हुण आ जाना ये उहो ही सीरी चलन दई है मेरे ख्याल कोई नवी गल नहीं

जी बिल्कुल बिल्कुल साडा कोई निजी मकसद नहीं बब्बी जी, असी भारत की सोहनी तस्वीर वेखनी चाहते हाँ, खास साडा पंजाब भी जिहड़ा उहदी ओह ही सोहनी तस्वीर जिथे सारे सुखी वसन, हांजी हर एक जॉब होए ते असी आ एक दूजे नाल आप ही ना लड़िए, सहयोग दईए, जिहदी सरकार बनदी है ते एक तगड़ी अपोजिशन भी होए, जिहड़ी अपोजिशन उन्हां नूं गलत काम करन तों ढके, पर साडियां अपोजिशनां बब्बी जी पता की ने सेंटर विच भी स्टेटा विच भी, भावें सरकार कोई स्वार दा काम भी करे अपोजिशन अपना फर्ज समझदी है कि उन्हूं भंडना। चलो तुसी किसे बुरे काम नूं ते भंडो, जे किते इसे तरह ही स्टेटा च है, बिलकुल धारना रवायत गलत है हिन्दुस्तान दे विच कि अपोजिशन ने पिटना ही पिटना, भावें तुसी स्वार दी गल भलाई दी भी कोई कर रहे हो, भलाई की गल न सपोर्ट करो, जे उन्हां दी कोई बुरी गल है, इन्नी सिविलाइजेशन जा अकल जा इन्ना पद्धर साडा उच्चा होना बहुत मुश्किल है। हां तां ही साडे इह हालात ने, स्वाद दा काम भी तुसी नुक्ताचीनी करनी है, माड़े काम की तो नुक्ताचीनी होनी चाहीदी है, ओह ते असीं नहीं कहिंदे आ, इह मकसद है अपोजिशन दा, ना कि अपोजिशन ढोल खड़काउणो हटे ही ना, अपना फर्ज समझ के रौली पौनी शुरू कर दें, यह कोई रवायत नहीं डेमोक्रेसी दियां, हां जी मिस यूज है डेमोक्रेसी का, मिस यूज कोई स्टेट च नहीं हो रहा, सेंटर च भी हो रहा ते हर स्टेट च हो रहा, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है मिस यूज कर, जदों सानू डकन वाले रोकने वाले मिस यूज करे ते असी भी तो फिर अगों उदा ही करना, साडा वड्डा अफसर अगर वड्डी लै रहा है ते सानू उत्साह मिलता कि वह भी लैन दिया ते असी भी तो क्यों ना अभी वड्डी लईए, चलो वेने आले दुआले बिल्कुल हलाशेरी दिती जा रही है, साडे जिहड़े सीनियर वह काम करते ने जिन्हां तो सानू कोई डकेगा कि तरह डकणगे, जदों तुसी वह काम कर रहे हो मैनू उस काम तो किस तरह डकोगे,

で खूबसूरत스러웠대요. ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा.

है अपने ही बस में नहीं मैं कहीं तो हूँ कहीं अपने ही बस में नहीं मैं दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं ओ जाने क्या बात है मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा आहा।

0: करता हूँ कहीं
1: क्या
0: मैं
1: बात है, क्या बात है?
0: अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, ओ जाने क्या बात है मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा आज मिलने की तमन्ना है।
1: खूबसूरत गाना है।

0: थैंक यू।
1: बहुत खूब, राधा जी किन्ने प्यारे गाने ने, वेखो
0: जी जी बिल्कुल।
1: अज भी जो कि रेडियो ते लगे हो मजा आ जाए, हवावा फजावा च खुशबू खिलार देंगे दे।
0: कन्न सुरीले हो जाते ने सर
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल गाने।
0: आए शर्मा हाय शर्मा, किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको, अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, बाल माँ की बाल माँ की, हाय तीन निशानियां। हाय शर्मा किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको, अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, पहली निशानी मैं हूँ जिसकी दीवानी, पहली निशानी मैं हूँ जिसकी दीवानी, रुत जैसे

की जवानी मस्तानी उसके आगे आए फीकी लागे हाय सब्र दी जवानियाँ हाय शर्मा किस किस को बताऊँ ऐसे कैसे मैं सुनाऊँ सबको।

रंग पगड़े का नीला रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला रंगीला चाल शराबी आए रंग गुलाबी अखा मस्तानिया शर्मा किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको।

तुझे दिल के दाग दिखला तेरे, ओ पंख होते तोड़ तेरे, यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के फिर

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बस जाते जाते दो लाइन मैं जरूर कहना चाहूंगी। ए मैं आप जी दे लई स्पेशल जो मेरे दिल दे बड़े करीब है

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।